एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोपन ब्रिस्त गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई धान्य धान्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल भवन के सिरजन हारे दास जान मोहलेहो उबारे कब्यो बाच बेनती चौ पई हमरी करु हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करु प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दे मोह बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सेख्य सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिय सबैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करिय रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीठ पछानै, घट घट की पट पट की जानै। जाबूद करख करा करतारा, प्रजा

जे अस्तु तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे।

दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री

तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत तारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत तारे आसन कोट करे अष्टांग तरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बेन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत तारे देश फिरयो कर पेस तपो तन केस तरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट कर

मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पन वडाहे कर डंडौत पन वडाहे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तेने अंतर हो मैं कंडाहे ज्यो डो चल चुबै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बसोब खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब

जिसे तारयो तर तर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सर समुद्र सर नर सुपत समंदर कै

0: पायो गुर अमर परगास। कच्चो कंचो कच्चन पियो शब्द गुर श्रवण सुनियो, कंचो कंचन पियो शब्द गुर श्रवण सुनियो, बिकते अमृत हो नाम सुत सतगुर मुख पणियो, लोयो होयो लाल नदर सतगुर जतारे, पाहण मान करे ज्ञान गुर केहो बिचारे, काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया से पस परेत सुर नर पे, काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया से पशु प्रेत सुर नर पे।
1: वाहिगुरु जी जाम गुरु होए बल तिना।

0: गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहे असमाई
1: गुरु पार्वती माई
0: जे हो जाना आखा नाही कहना कथ न जाई कीर्त नावा जी तिस पावा विन पाने के नाई करी मत विच रतन जवाहर माणिक देख गुर की सिख सुनी जे जुग चारे आर जा होर सोनी होए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सकै काल सुने ईश्वर वर्मा इंद सुने मुखसा लाहन मंद नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने पड़ पड़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान सुने सरा गुणा की गाह सुने सिख पीर पातशाह नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाप का नाश कागद कलम न लिखन हार मन्नी का बह करन विचार मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल भवन की सुध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मग न चल पंथ मन धर्म से तीसर बंद।

0: पांडे
1: चात्री चंद प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे
2: हरियं करियं नीनामे अकामे
1: भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हरता
2: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
1: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र प्रति
2: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
2: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
1: चाचरी छंद ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर
2: न कर्म न काय जन्म न जाए
1: ना चित्र न मित्र परे है पवित्र
2: अदृश्य अदृश्य अदृश्य
1: भगवती छंद
3: प्रसाद कतते क्या छज देसे क्या बिज पैसे
2: क्या कन कर में क्या पंज पर बे
3: बिज लोके के आदि तु सो
2: के अवतूत बरने के प्रभुत करने
3: आज प्रभा है के तर्मंग तु जाए
2: के अशोक बरने के सर्वा परने
3: करती है के शतरंग क्षत्रिय
2: है के ब्रह्म स्वरूप के अनप अनुपे
3: आदि देव के आप पे
2: के किचन बहिने के अधीन है
3: रोजी रजा के रही में रहा
2: के पाक बैब है के गैबुल गैब है
3: गुना है के शाहन
2: के कारण कुनेंद है के रोजी दहन
3: रही मैं के कर्म करी मैं
2: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
3: सर्वत्र पानी के सर्वत्र दानी
2: के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौने
3: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे
2: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
3: सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
2: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र

0: सर्वत्र पाहो,
1: सर्वत्र देशे के सर्वत्र,
0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले,
1: सर्वत्र अंता के सर्वत्र कंता,
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी,
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे,
0: के सर्वत्र सोख के सर्वत्र पोख,
1: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे,
0: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे,
1: सर्वत्र मानिये से दैवं प्रदाने,
0: के सर्वत्र जापिये के सर्वत्र थापिये,
1: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने,
0: के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे,
1: सर्वं कलीमे के परमं फहीमे,
0: के आकल अनामे के साहिब कलामे,
1: प्रभुक्त
0: प्रभा संयुक्त सुधा है
1: सदैव स्वरूप अनुप
0: समस्त पराज है सदा संसाज है
1: सलाम सदैव लकाम है
0: निर्वास रूप है अगाध है रूप है
1: अनाद रूप है अनाद स्वरूप
0: है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: दुर्बाध्या गंजे अगाधे
0: सुबह सर्प आगे सुसर्प अनुरागे
1: स्वरूप है अचुज है अचूत है
0: के नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है
1: प्रभा है सदैव सदा है
0: प्रभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: सदा है प्रभुक्त प्रभा है
0: अनुप स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: शांत पंग है अनंग है अपेक है लेख है
0: अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद
1: है बे है पूत है तूत है
0: अनाश है उदास है अदंध है अबंध है।

0: नास्य सदैव प्रकाश
1: अनंतं स्वरूपे अपंगं प्रभूते
0: मातंग परमाते सदा सर्वसाध
1: अदा स्वरूपे निर्वाण प्रभूते
0: अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
0: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
1: न नाते न माते न जाते न पाते
0: साकं सरीके मितो अमीके
1: सदैवं प्रवाह अजय है अजा है
2: भगवती चांत्रय प्रसाद इजाहर जहूर है के हाजर हजूर है
1: हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है
2: साहिब दिमाग है के हुस्नुल चराग है
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है
2: रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
1: करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है
2: करीमुल खिराज है गरीबुल निवास है
1: हरीफुल शिकन है रियासल फिकन है
2: रंकर पढ़ना से समस्तुल निवास है
1: अगंजुल गरीम है रजाय करीम है
2: समस्तुल जुबा है के साहिब किराज
1: के नरकम परनास है बस्तुल निवास है
2: सरबुल गवन है के हमेशुल
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
2: परम परम ईस है समस्तुल अदीस
1: है अदेशुल अलेख है अमेशुल अपेख है
2: जमीनुल जमा है अमीकुल इमाम
1: करीमुल कमाल है के जुर जमाल है
2: अचलन प्रकाश है अमितो सुबास
1: के अजब स्वरूप है के अंतो पभूत है
2: अमितो पसा है के आत्म प्रभा
1: के अचलन आनंद है के अंतो अपंग है
2: मधुपार चंद्र प्रसाद मुन मन पर नाम गुन गन मुदा
1: हर भर गंज हर नर पर पांजो
2: गन पर नाम मुन मन
1: हर नर्य अखंड भर नर्य मंड
2: पव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
2: अचिज अंग आसन अपांग
1: उपमा पार गत में तो दार
2: थल अमंड दिस विश अपार
1: जल थल महंत दिस विश बेअंत
2: पव अनास ते तर तो
1: आजान बाहु एके सुदाहु
2: कार आद कथनी अनास
1: खल खंड के आल गुर भर अकाल
2: कर प्रणाम चित चन नाम
1: अचिज गात अचिज न बात
2: अचिज गात अनरंज बात
1: अंटुट पनार अंडठ पार
2: डीठ तरम अत डीठ करम
1: अनवर्ण अंत दाता महंत
2: फिर बोल मना चंद्र प्रसाद करनालय है अर कालय है
1: कलखंडर है मैं मंडल है
2: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कलकान है सर्ववान है
2: त्रित के तन है जग के कर
1: मन मान्या है जग जान्या है
2: सर्वन पर है सर्वन कर
1: सर्पाचा है सर्वनाचा है
2: करुणाकर है बेसंबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
2: ब्रह्मंडस है कलखंडस है
1: परते पर है करुणाकर है
2: जपे थप्पा थप
1: अक्ता कित है अमृता अमृत है
2: अमृता अमृत है करुणा कृत
1: अक्ता कित है तरणी चित है
2: अमितेश्वर है परमेश्वर
1: अक्ता कित है अमृता अमृत है
2: अजबा कृत है अमृता अमृत है
1: धरनायक है खलकायक है
2: विसंबर है करुणालय है
1: निपनायक है सर्पायक है
2: पंजन है अर्गंजन है
1: जपन है जप जापन है
2: अकलन कृत है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
2: परमात्म है सर्वात्म है
1: आत्म बस है जस के
2: जंग प्रयात चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद चंद
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
2: नमो अंधकारे नमो तेज तेज
1: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
2: नमो राजन तामसन सात रूपे
1: नमो परम तंतं अतंतं स्वरूपे
2: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
2: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
2: नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्र अनादं प्रभुते
2: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
2: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
2: एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
1: अबू अजू अनास कास
2: अगंज अपंज अलक अपाक
1: अकाल दयाल अलेख पेख
2: नाम अकाम अगा अढा
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
2: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्म अपर्म अगंजे अलेख
2: जंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणाम में समस्तुल प्रणा से
1: अगंजुल नाम में समस्तुल निवास से
2: कामन बेपूते समस्तुल स्वरूप
1: को कर्म प्रणा से सुतर्म प्रभुते
2: सदा सचदानंद सत्रन प्रणा से
1: करीमल को निंदा समस्तुल निवासी
2: अजाय बभूते गजाय गनी में
1: हरियं करियं करीमुल रहीम में
2: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते
1: सर्वम शुभम सर्वदा सर्व जुगते
2: दुकालन प्रणा से दयालन स्वरूपे
1: सदायंग संगे अपंगं प्रभुते
2: तुकालं परना सीदयाल
1: सदायंग संगे अपंगं प्रभुते
2: वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहे गुरु जी की फतेह
3: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तुए प्रसाद सवैये श्रावक सुद समो सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के
1: छोर छोरार्दन शुद्ध सुदादन संस

0: संग अनुप उतंग सुरंग सवारे
1: तुरंग तुरंग से कुदल पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूप पली बित न्यावत सीस ना जात बिचारे
1: ते पे तो कहा पे पूप अंत को

0: सतन सभी लोक छपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र नाथ पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे।
0: ब्रह्म
1: महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे।

0: साच को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो।
1: काहू ले पाहन पूंज तरियो सिर काहू ले लिंग गड़े लटकायो।
0: काहू लिखो अरवासी दिशा।

0: ना कीचे जे दंत पछोताई।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
0: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले।
1: अगम गोचरा तेरा अंत न पाया,
0: अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है।
1: जी जन सब खेल तेरा क्या को आख खाने,
0: आखे तो वेखे सब तू है जिन जगत उपाया।
1: रहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया।
0: सुनर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया,
1: पाए अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया।
0: जी जन सब तू दुपाए एक वेक प्रसन्न आया,
1: लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु बला पाया।
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।
1: भक्ता की चाल निराली चला निराली, भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना,
1: खन्यो दिखी वालो निकी एक मार्ग जाना।
0: प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी,
1: रहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली।
0: जियो तू चलाए ते चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
1: जिस तू चलाए तुम्हें चलाए जिना मार्ग पावे,
0: हर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ध्यावे।
1: जिसनु कथा सुनाई अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों भावे तिवे चलावे।
1: ए सोएला सब सुहावा सब तो सुहावा सदा सोएला सतगुरु सुनाया।
0: तिनके मन बसिया जिन दूरों लिखिया आया।
1: एक फिरे कनेरे करे गला गली की ने ना पाया।
0: कहे नानक सबद सुहेला सतगुरु सुनाया।
1: पवित्र ऐसे जना जिनी हर ध्याया,
0: हर ध्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी ध्याया।
1: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सो पवित्र संगत समाया।
0: कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया।
1: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर ध्याया।
0: कर्मी सहज न उपजै वण सहजै सहसा न जाए,
1: न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
0: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए,
1: मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए।
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए।
1: जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: ए तिसना वड़ा रोग लगा मरण मनु विसारिया,
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया।
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।
0: कूड़ की सोए पहुँचे नाही मनसा सच समा।

0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये।
1: मनो क्यों विसारिये दाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
0: उसनु कोई पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लाए।
1: अपनी लिव आपे लाए गुरुमुख सदा संभालिए।
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब एको जेह करता खेल रचाया।
1: जात इस पाणा ता जमिया परवार भला पाया।
0: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: हे माया जित हर विसरे मोप जे पाओ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विच तिनी विचे माया पाया।
1: हरे आप मुल कहे मुल ना पाया जाए।
0: मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सो पिए विचो आप जाए।
0: जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: हरे आप

0: चाहे नानक सिसका मूल रचिया ज्योतरा कीता तू जग में आया।
1: मन चाओ प्या प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया।
0: हर गाओ मंगल नित सखी ऐसो दुख ना व्यापे,
1: चरण लागे दिन सभागे अपना।

0: भजन बिन परत ताहे जमफंद।
1: सुख में बा संगी बे, दुख में संग न कोए।
0: कहो नानक हर भज मन।

हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूरन हुए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम का वह। आप हाथ दे मोहि बचाव हो, सुखी बसे मोरु परिवारा।